0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Jaan

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4.

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: 106.3 Radio Olive. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
3: Cool song.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक।
4: अरमान मलिक
5: नंबर
3: 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: रेडियो ऑलिव नंबर 1।
6: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: रेडियो ऑलिव, आवर नंबर वन।
3: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
2: Listening to Radio Olive 106.3.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.

हाय हाय, बस सोच के ही मजा आ जाता है। खैर, आप में से बहुत सारे लोगों का जो है अभी तक वीकेंड चल रहा है, अभी तक छुट्टी होगी, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। नहीं मतलब नहीं हूं मैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इंजॉय कीजिए आप अपनी लाइफ। लाइफ मस्त है और मस्त ही रहनी चाहिए, और जो थोड़ी बहुत कमी रह रही है वो मैं पूरी कर दूंगी यार। तो बस आ गई हूं मैं आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर, एंड बहुत सारी अमेजिंग बातें अभी हम करने वाले हैं आपको। मूवीज का सजेशन मैं देने वाली हूं, खाने में क्या कुछ चटपटा आप बना सकते हैं, क्या कुछ चटपटे गाने जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं, वो सब मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक अमेजिंग गाना, चुनरी चुनरी लेट्स गो, आ रहा है आपके रेडियो सेट पे। सबसे पहले इसे एंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं इस मूवी का रिव्यू भी आपको दूंगी, रिलीज हो चुकी है, क्या कह रहे हैं लोग। सही गाना एंजॉय कीजिए, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: क्या बढ़िया फील आए कि ये गाना बैकग्राउंड में चल रहा हो, आपकी खिड़कियां जो है गाड़ी की वो बंद हो, एसी जो है वो मध्यम मध्यम चल रहा हो और बाहर पेड़ आपको जो है हिलते हुए दिख रहे हों, पत्तियां जो है वो हिलते हुए दिख रही हों और फिर आप उसी मोमेंट पे जो है खिड़की जो है कांच शीशा नीचे डाउन करें और फिर गरम गरम लपटें आपके मुंह पे पड़े, वाह वाह वाह। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपको डराने का मेरा कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मेरे साथ ही हुआ। मैं ईयरफोन्स लगा कर एकदम वाइब कर रही थी एंड तभी मैंने ना देखा कि यार बाहर कितना अच्छा मौसम दिख रहा है, हो सकता है कि अच्छा हो, और मैंने जैसे ही खिड़की खोली ऐसा लगा किसी ने सच में गरम गरम जो हेयर ड्रायर होता है ना वो मेरे मुँह पर चला दिया है। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 41 रहने वाला है एंड लोएस्ट जो है वो 33 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि देखिए सनस्क्रीन बिल्कुल मत भूलिएगा एंड उसके साथ साथ पानी जो है वो बीच में पीते रहिएगा एंड एकदम से गर्मी क्योंकि लग रही है तो ठंडा ठंडा पानी पी लूं ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए क्योंकि मतलब कोई आपको प्यार करे ना करे, मैं तो आपको प्यार करती हूँ ना, और अगर आप भी मुझसे प्यार करते हैं तो 3311063 3311063 इस नंबर पर जो है आप अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे भेज सकते हैं। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर का वक्त हो चला है तो आइए सुनते हैं
1: कूल सॉन्ग। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या पर ये बात है,
0: अब मैंने देखिए मैसेजेस की बात करी लेकिन गाना जो है वो खत है, सो खत तो नहीं लिख पाएंगे आप लेकिन मैसेजेस कर दीजिए, इंतजार कर रही हूँ मैं 3311063।
3: बार का मैं तेरी राय का
0: और कहते रहिए जियो बिंदास।

जब आपको क्रिंज और कॉमेडी इन दोनों चीजों का फर्क समझ आने लग जाए ना, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आप जो है मैच्योर हो चुके हैं। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड क्योंकि वीकेंड गुजरा है, फ्राइडे को जो है एक मूवी अच्छी खासी रिलीज होती है, लेकिन इस वीकेंड पे जो मूवी रिलीज हुई उसने शुरुआती एक घंटे में 5,000 से ज्यादा टिकट जो है वो तो सेल कर दी, लेकिन जिन लोगों ने वो मूवी देखी उसके बाद का जो रिव्यू था, फिर तो सब यही कह रहे हैं कि मूवी क्यों ही देखी हमने। बात मैं कर रही हूँ है जवानी तो इश्क होना है। हाँ जी, मूवी का नाम है वरुण धवन स्टारर ये मूवी है, एंड डेविड धवन ने जो है ये मूवी डायरेक्ट की है। सो एज यूजुअल अगर हम बात करें डेविड धवन की, तो वही पीक गोविंदा कॉमेडी उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वरुण धवन से वो हो नहीं पाई। एंड आज का टाइम ऐसा है ना जहाँ पर वो कॉमेडी नहीं चल पाएगी, जहाँ हम बैड्स ऑफ बॉलीवुड की कॉमेडी को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके की कॉमेडी मैं थोड़ा सा अग्री नहीं करती हूँ उससे। बट आपको ये मूवी कैसी लगी अगर आपने देख लिया तो, और अगर देखने जाने का प्लान कर रहे हो तो 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर जल्दी जल्दी से जो है फटाफट मुझे बता दो। खैर, एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: बैंकिंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

कल हम मेरे टेक शो पर इसी पर बात कर रहे थे कि किस तरीके से हर चीज जो है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, एंड जो चीजें फ्री में मिला करती थी उन चीजों के भी अब पैसे देने पड़ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब खुले में सांस लेने के लिए भी हमें एक बड़ा बिल जो है वो पे करना पड़ेगा कि आपने जो है 4 बार एक्स्ट्रा सांस ली है तो इसके पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड लाइफ मस्त है शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ मस्त थी यार जब तक सब कुछ फ्री में मिल रहा था, अब तो इंस्टाग्राम चलाने के लिए और कुछ फीचर्स यूज करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी, सो मेटा ने ऑफिशियली जो है इंस्टाग्राम प्लस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस जो है वो इंडिया और गल्फ रीजन में जो है लॉन्च कर दी है। ये एक ऑप्शनल पेड सर्विस है जिसमें यूजर्स को जो है एक्स्ट्रा फीचर्स कस्टमाइज ऑप्शन जो है वो मिलेंगे, जबकि नॉर्मल इंस्टाग्राम जो है वो पहले की तरह बिल्कुल फ्री रहेगा। लेकिन जब सब प्रीमियम यूज कर रहे हैं तो हम फ्री यूज क्यों करेंगे, हम क्यों बेसिक रहे। अब देखिए क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं इसमें तो मुझे लगता है कि आप भी इसी को ही चलाना चाहेंगे। सो क्या क्या फीचर्स हैं हम पहले बिंदास मॉर्निंग पे बता चुके हैं, सुदेव भी बता चुके हैं आपको, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगी कि 48 आवर्स की स्टोरी हो जाएगी, यानी अब आप 24 घंटे की जगह 48 आवर्स तक अपनी स्टोरी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टोरी रीवॉच इनसाइट्स जो है, मतलब आपकी कौन जाके स्टोरी बार बार देख रहा है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आप किसी रैंडम इंसान की स्टोरी जाकर देखते हैं तो उसे पता नहीं चलेगा, चुपके से आप जाकर उन पर नजर रख सकते हैं। तो मम्मी पापा को ये फीचर मत पता होने देना, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली जो है आपकी फोटोज हाईलाइट में जो है वो जा सकती हैं, एंड ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग फीचर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। एंड जल्द ही व्हाट्सएप और फेसबुक प्लस जो है वो भी पेड फीचर्स के साथ आने वाला है। सो आप कितने एक्साइटेड हो इसके लिए, या आप मुझे बता सकते हो 3311063 पर मुझे मैसेज करके। बाकी एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी।

ये रिसर्च करने वाले तो बाद में रिसर्च करते हैं, सारी चीजें मेरी मम्मी को पहले से ही पता होती हैं। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफेयर, मैं हूँ आपकी कशिश। एंड मेरे मम्मी पापा को मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्चर्स से बहुत पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तभी वो बहुत पहले से, मतलब बहुत शुरुआत से जो है गॉसिप करते आ रहे हैं। मतलब मम्मी जो है वो आकर पूरे दिन की गॉसिप पापा को देंगी, पापा ऑफिस की सारी गॉसिप मम्मी को देंगे। और मुझे इसीलिए ऐसा लगता था कि यार कितने कूल है ये, इनका रिश्ता इसीलिए तो चल रहा है। और लो भाई, अब रिसर्चर्स ने जो है ये बता दिया है कि कपल्स जो गॉसिप करते हैं साथ में बैठ कर, चुगलियां करते हैं या बस किसी का मजाक उड़ाते हैं ना साथ में, उनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहता है। एंड एक और रिसर्च मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी कि अगर आप अपने पार्टनर को रोस्ट करते हो, मतलब पॉजिटिवली रोस्ट करते हो, उनकी कुछ आदतों का छोटा सा मजाक उड़ा देते हो, तो ना आपका बॉन्ड जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन देखिए, मजाक जो है वो थोड़ा हद में उड़ाना है, ऐसा नहीं कि आप हर बात मजाक उड़ाने लग जाएं, वरना फिर मनाने के लिए देखिए फूलों का खर्चा बढ़ जाएगा। 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश। अमेजिंग वाले गाने आपकी नजर आपके रेडियो सेट्स पर जो है वो हम कर रहे हैं, सो एंजॉय करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और कहते रहिए जियो पिंदास। आकर एक अमेजिंग वाली चीज आपको बताने वाली

0: एक महापुरुष रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे रहो, तो सक्सेस जो है वो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। एंड अगर ये बात आपको सुनी सुनी लग रही है तो मुबारक हो, आपने थ्री इडियट्स देखी है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए लाइफ मस्त है शो लेकर आ गई हूँ। एंड इस बात से जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ वैसे वैसे रिलेट करती जा रही हूँ कि यार अगर आप एक बार अपने आर्ट में अच्छे हो गए तो फिर आपको ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलने लग जाएंगी। लेकिन लेकिन लेकिन आजकल के जो जेंजीज हैं, मतलब इंक्लूडिंग मी, वो ये कह रहे हैं कि यार हम अपना आर्ट तो एक्सेल कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें जॉब नहीं मिल पा रही है। सो मतलब 10 में से 7 यंग लोगों का ये कहना है कि उन्हें फर्स्ट जॉब मिलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखो आई अग्री, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल हम क्वालिफिकेशन को ध्यान में ना रख के स्किल्स पे जा रहे हैं, पहले जॉब देने वाले ना थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि यार इन्हें जॉब देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसीलिए दिक्कत आती है। वरना एक जॉब लेने के बाद हम जब प्रूव करने पर आते हैं कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, सो जेंजीज किसी से मतलब कम है ही नहीं। एंड ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ क्योंकि मुझे भी फर्स्ट जॉब लेने में बहुत मेहनत लगी थी। मैंने 2 साल इंटर्नशिप की थी तब जाके मुझे कहीं पहली जॉब मिली थी। एंड उसके बाद अपॉर्चुनिटीज अपने अपने आप जो है आपके पीछे आ जाती हैं। नो नज़र प्लीज़, सब माशाल्लाह कहेंगे एंड अगला गाना जो है वो सुनेंगे। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर, दिस शो इज लाइफ मस्त है और बस मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

देखो मैं आती हूँ यहाँ पर आपकी लाइफ को मस्त बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, ये कोशिश करती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करूँ और कुछ ऐड ऑन ना भी करूँ तो बस आपको हंसा दूँ, आप मेरी वजह से मुस्कुरा दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जोक्स के अलावा भी बहुत कुछ होता है जिससे हमारे फेस पे जो है एक स्माइल आ जाती है, और बस वही करने के लिए मैं आ गई हूँ। Welcome back 106.3 Radio Olive पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड लाइफ मस्त है शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड जहाँ पर मैं हर वक्त जोक्स क्रैक करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ फनी बोलने की कोशिश करती हूँ, इलॉजिकल चीजों पे बात करती हूँ, वहीं पर अभी मैंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसी चीज पर बात की जाए जिससे नेचुरली आपके फेस पे स्माइल आ जाए एंड कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हो जाओ कुछ अच्छा करने की। सो हम अब से जो है अपने शो में बात करेंगे एक्ट ऑफ काइंडनेस की, मतलब कब लोगों ने जो है इंसानियत दिखाई है एंड वो इंसान है ये प्रूव किया है। सो अभी रिसेंटली जो है ये इंसिडेंट हुआ है जहां पर दिल्ली में एक होटल में आग लग गई एंड वहां पर लोग फंस गए। तभी वहां पे उसी मार्केट में एक सर की दुकान थी, वो मैट्रेस जो है यानी गद्दे जो है उसकी शॉप थी, उसका शोरूम था एंड उन्होंने और उनके बेटे ने जो है वो मैट्रेस उस बिल्डिंग के नीचे जो है वो फैला दी है जल्दी से जल्दी, ताकि लोग जो है वो खिड़कियों से जंप कर सके उन मैट्रेस पे और उनकी लाइफ जो है वो बच सके। एंड आई किड यू नॉट 12 लोगों से की जो है जान बचाई ऐसे करके उन्होंने। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्टॉक की फिक्र ना करते हुए, अपने बिजनेस को साइड में रख के जो इंसानियत इन्होंने दिखाई, अगर इसका 5% भी हम डेली करने लग जाए ना तो ये जो दुनिया है ये हमारे लिए एक बेटर प्लेस बन सकती है। एंड ये जो काइंडनेस है ना ये घूम के गोल घूम के वापस हमारे पास आती है। सो बस कुछ अच्छा कीजिए और अच्छे गाने तो मैं आपको सुना ही रही हूँ। सो बस लाइफ मस्त है, सुनते रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

आपको ऐसा नहीं लगता कि जहां पर थिएटर्स में अब सिर्फ ब्रेन रॉट कॉमेडीज आ रही हैं और OTT जो है वो बहुत सारा एक जैसे कंटेंट से भर चुका है, सो कहीं ना कहीं एक फ्रेश कंटेंट की तलाश जो है उसमें हम पीछे रह रहे हैं। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल ओवर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ मस्त कैसे बनती है? जब हम अच्छा कंटेंट जो है वो कंज्यूम करते हैं, कुछ यूनिक देख रहे होते हैं, वरना वही चार सीरीज है, वही चार मूवीज है जो OTT पे हम सब कंज्यूम कर रहे हैं, जो नंबर वन पे, नंबर टू पे, एंड वही डिस्कशन जो है वो होता रहता है, चाहे हमारी ऑफिस की कैब हो, चाहे लंच टेबल हो, या फिर घर का डिनर टेबल हो। पर मैं जो है, मैंने बीड़ा उठाया है कि आपकी लाइफ मस्त बनाने के लिए कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स मूवी के, सीरीज के, बुक्स के सजेशन मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। एंड आज की मूवी जो मैं लेकर आई हूँ, ये 2019 की एक मूवी है जिसका नाम है आमिस। ये एक बहुत ही यूनिक, डार्क और थोड़ी सी डिस्टर्बिंग आसमीज मूवी है। यानी आप अगर हिंदी, इंग्लिश, मलयालम मूवी देख के बोर हो गए हो, सो अब आप आसमीज मूवी के तरफ भी जा सकते हैं। एंड अनुराग कश्यप ने जो है ये मूवी प्रेजेंट करी है, सो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़े से अलग जॉनर में होने वाली है। सो अगर आपको रेगुलर से हटके कुछ देखना है, सो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है। ये स्टोरी घूमती है एक मिडिल एजेड पीडियाट्रिशियन डॉक्टर के आसपास और एक यंग PhD स्टूडेंट के अराउंड। शुरू में आपको लगेगा कि यार ये बहुत क्यूट सी, इनोसेंट सी लव स्टोरी है, लेकिन धीरे धीरे ये मूवी जो है डार्क होती जाती है। एंड मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत कमजोर दिल के इंसान हैं, अक्सर जो है रो देते हैं मूवीज देख के, या आपको छोटी मोटी हॉरर मूवी में भी जो है डर लगने लग जाता है, तो फिर ये मूवी आपके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसी थ्रिलर देखने का शौक रखते हैं, ये उनके लिए एक अमेजिंग पिक होने वाली है। अगर मैं बात करूं कितनी रेटिंग मैं दूंगी, तो अगर 5 में से मुझे इसे रेट करना है तो मैं इसे 4 रेटिंग दूंगी। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कशिश क्या ये कशिश अप्रूव्ड है, सो बिल्कुल कशिश अप्रूव्ड है, तभी आपके लिए लेकर आई हूँ। सो आमिस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं किस तरीके की लगी है मूवी। क्या आपको और ऐसी सजेशन चाहिए, आप मुझे आके बता सकते हैं 3311063 पर। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

आप कैसे पता लगा सकते हो कि आप अडल्टहुड की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कि आप जो है लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप बड़े हो रहे हो? जब आपके वीकेंड जो है वो सिर्फ ग्रोसरी का जो सामान है वो लेने में जो है गुजर जाए, या फिर अगर सेकेंड वीक थर्ड वीक है तो फिर प्लम्बर को बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, आप ये सोच रहे हो। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ मस्त होती है लेकिन बीच में वीकेंड आ जाता है और सोने के बजाय हम घर के काम करने में व्यस्त हो जाते हैं। क्या मेरे तो पिछले कुछ वीकेंड ऐसे ही जा रहे हैं, या तो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ कि देख लेती हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है मेरी बॉडी के साथ, या तो फिर मैं जो है इलेक्ट्रिशियन भैया को या प्लम्बर भैया को बुला रही हूँ कि भैया ये पानी नहीं आ रहा है, भैया गीजर नहीं चल रहा है, भैया एसी नहीं चल रहा है। एंड कल ये सब करने के बाद जब मैं शाम को हाइपरमार्केट गई सामान लेने के लिए, तब वहाँ पे मुझे क्या दिखा, मुझे दिखी सोन पापड़ी, जो मैं इंडिया में खाती भी नहीं थी, देखती भी नहीं थी, छूती भी नहीं थी, उसको पैक करके वापस किसी और को दे दिया करती थी।

चीजों से अपने घर की याद आती है। और आपका वीकेंड कैसा रहा बताइए मुझे जरा 3311063 पर आके। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, इन्हें भी एंजॉय कीजिए। एंड बहुत सारी अमेजिंग बातें अभी करनी है, क्रिकेट की बात अभी करनी बाकी है, तो स्टे ट्यून्ड रहो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: देखिए वैसे तो ये वाली बात मैं अक्सर कहती हूँ, लेकिन आज फिर से कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इतिहास खुद को दोहराता है, बिल्कुल उसी तरीके से फैशन भी खुद को दोहराता है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। एंड हिस्ट्री जैसे खुद को रिपीट करती है, बिल्कुल उसी तरीके से फैशन भी खुद को रिपीट करता है। हम काफी सारे अपने मम्मी पापा के जमाने के फैशन ट्रेंड्स को आज जो है देख रहे हैं। मम्मी तो कहती है कि मुझे मेरे कपड़ों को जो है बहुत संभाल के रखना चाहिए था, अभी जो है तुम्हारे बहुत काम आता, तुम यहाँ पर इतने महंगे महंगे ये वाले कपड़े ले रही हो और मेरे पास तो ऑलरेडी रखे हुए थे। वैसे ही अब जो है कैटरीना कैफ का जो अर्ली 2000 वाला जो वाइब था वो कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। कई सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है उनके लुक्स क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो जरा जरा टचमी वाला लुक हो, चाहे वो किसी और मूवी का लुक हो, अब लोग काफी रिक्रिएट कर रहे हैं उसे। एंड ये इंस्टाग्राम पे वायरल हो रखा है। लड़कियां अब Y2K फैशन के लिए जो है पूरे के पूरे आउटफिट्स जो है वो कहीं ना कहीं कॉपी कर रही है, कॉपी नहीं कहना चाहूंगी, इंस्पायर हो रही है उससे। एंड मुझे इतना मजा आ रहा है ना, बिकॉज वो मिसमैच ज्वेलरी, वो क्वर्की कलर्स, कहीं ना कहीं हम जो है वो बेसिक्स की तरफ चले गए थे। हम न्यूट्रल टोन्स पहन रहे थे, बेज ब्राउन पहन रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो चटक पिंक, वो ब्लू, वो शिमर जो है वो लौट कर आया है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरा वाइब है। खैर वाइब वाले गाने तो आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें एंजॉय कीजिए। थोड़ी सी देर में आगे क्रिकेट की बात करेंगे वादे के अनुसार, सो स्टे ट्यून्ड रहो और रात की कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

जहाँ पर एक वक्त था कि मैं अपने दोस्तों से पूछा करती थी कि ये जो टेस्ट क्रिकेट होता है इसमें सब सेम कलर के कपड़े पहनते हैं तो पता कैसे चलता है कि कौन सा बंदा कौन सी टीम से खेल रहा है। मतलब अंपायर से भी तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो भी तो वाइट ही कपड़े पहनते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं ऐसे स्टूपिड सवाल मैं अपने दोस्तों से पूछा करती थी एंड वहाँ पे लोग स्टेट कर देते थे कि लड़कियों को तो क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। और ये ताना सुनने के बाद मैंने जो है क्रिकेट के बारे में जानना, पढ़ना और क्रिकेट को जो है फॉलो करना शुरू किया। एंड वो दिन है, आज का दिन है, मुझे अगर आप क्रिकेट पगलू कह दो तो उसमें कोई दोहराई नहीं होगी। सो T20 लीग में जो है इंजॉय करने के बाद अब वक्त आ गया है टेस्ट सीरीज को इंजॉय करने का। चंडीगढ़ में इंडिया में जो है एक नई सीरीज जो है वो खेली जा रही है, इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज है। इंडिया ने पहली बैटिंग जो है वो चुन ली है एंड शुभमन गिल की कैप्टनसी में जो है टीम खेल रही है। 16 साल में पहली बार बिना अश्विन या जडेजा के जो है इंडिया होम टेस्ट खेल रहा है एंड जिसमें कुलदीप यादव जो है वो लीड स्पिनर है। अब अगर मैं बात करूं हेड टू हेड टेस्ट हिस्ट्री की तो 2018 में अफगानिस्तान ने डेब्यू किया था इंडिया के खिलाफ बैंगलोर में एंड मैच की समिति कुछ इसी तरह रही थी कि इंडिया ने ये मैच 2 दिन में इनिंग्स और 262 रन से जीता था। अगर मैं ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करूं तो कहीं ना कहीं इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी है लेकिन अफगानिस्तान को बिल्कुल भी आप मतलब हल्के में नहीं ले सकते। देखते हैं कि इस टेस्ट में क्या होता है। खैर आप को क्या लगता है कि कितना स्कोर कर पाएंगे एंड मैच कैसा रहेगा, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं बताइए 3311063 पर मैसेज करके। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सच पर, इन्हें एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओबिंदास।

0: बारहवे।
1: कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा ने आपको प्रॉमिस किया हो कि टेंथ में अगर आपने अच्छे मार्क्स ले आए तो आपको साइकिल मिलेगी, और फिर जब आप अच्छे मार्क्स ले आए तो वो पलट गए कि नहीं हमने तो ऐसा नहीं कहा था। या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि दोस्त ने जो है वादा किया हो कि मैं तुम्हारे पैसे 1 तारीख को लौटा दूंगा, और फिर वो अपनी बात से पलट गया हो कि सॉरी मैं तो नहीं लौटा सकता। सो ऐसे पलटने वाले लोग हमने अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं, एंड हम भी काफी बार अपने वादों से अपनी बातों से पलटे ही होंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि हर गलत जगह जो है हम पलट जाते हैं, लेकिन एक अच्छी जगह, सही जगह जहाँ पलटना चाहिए, वहीं जो है जल्दी में फैसला ले लेते हैं। आई नो आपको समझ नहीं आ रहा है, समझाऊंगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश, लाइफ मस्त है, शो आप इंजॉय कर रहे हैं। एंड पलटने की बात जो है हम कल करने वाले हैं। हाँ जी, कल से पलटने पर कुछ बहुत स्पेशल मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। सो आपको जो है स्टे ट्यून्ड रहना है 106.3 रेडियो ऑलिव पर, एंड सेम टाइम पर लाइफ मस्त है मैं आपको ज्वाइन करना है। तो कहाँ कहाँ पलटना इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। फिलहाल मैं पलटती हूँ, पलट के जो है जाती हूँ ऑफिस के बाकी काम करने के लिए, और आपको छोड़े जा रही हूँ तनीषा के साथ। सो तनीषा के साथ बहुत सारा फन कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, खाना खाते रहिए, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, मुझे बिल्कुल मत भूलना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और कहते रहना जियो बिंदास, टाटा बाय बाय।

0: फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स्थ ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एडविन ओमरान सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल। फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा। अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं विजिट फाल्कन फिटनेस बिन ओमरान वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: क्या होता जो राज के पुकारने पे सिमरन न पलट, वैसे ही क्या होता जो सुबह नाश्ते के लिए मम्मी तवे पर रखा पराठा न पलटती। भाई साहब सही जगह पर पलटना बहुत जरूरी है। अब पलटने के फायदे और नुकसान क्या है पता चलेगा बहुत जल्द।

0: Supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
2: गुलराज सिंह
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
2: जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. Experience more with Ooredoo.
2: Olive Music Marathon. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

Causeway. Beautiful traveling on Radio 11.6.3 FM. Tanisha Aage ji aapke saath. All of recharge lekar a very good afternoon, meri jaan. Beautiful remix version of Tu Hi Re. आने वाला है कुछ देर में आश किंग और सुनिधि चौहान की आवाज मीठी है

हाँ जी, ऑल दीज अमेजिंग ट्रैक्स आर लाइंड अप फॉर यू इन दिस आवर, और ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपके हालचाल, कैसा रहा आपका वीकेंड, क्या क्या किया आपने, सब जानना चाहूंगी। तो फटाफट से आ जाओ 3311 1063 पर, मैसेज कर दो और सुनते रहो रेडियो ऑलिव जियो बिंदास मेरी जान।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सा...

0: रिसीव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
0: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: This is Amira Dastur on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: तनिषा
1: अरमान मलिक की आवाज में जज्बाती है दिल, एकदम सही बात है, दिल तो बहुत जज्बाती है, हमें ही थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत पड़ जाती है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा, आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मुझे कहनी थी कि जिंजर को कहते हैं अदरक, ठीक है, जिंजर को कहते हैं अदरक। गुड डेज आर कमिंग मेरी जान, तू थोड़ी सी ठंड तो रख, सबर करो, कर्म करते जाओ, फल आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और फिलहाल मुझे मैसेज करो 3311063 पर, सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड जुड़े विद अस मेरी जान। कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: क्या होता जो राज के पुकारने पे सिमरन ना पलट, वैसे ही क्या होता जो सुबह नाश्ते के लिए मम्मी तवे पर रखा पराठा ना पलटती। भाई साहब, सही जगह पर पलटना बहुत जरूरी है। अब पलटने के फायदे और नुकसान क्या है पता चलेगा बहुत जल्द। Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM पर Jio Bindas. Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
5: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: KKK Awaz mein Alvida from the movie Life in a Metro only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath. Olive recharge chal raha hai yahan par and you know weather kafi keher barsa raha hai is waqt, to bahut zyada garmi ho chuki hai. So is soaring temperature mein kaise apna khayal rakhna hai agar aap outdoor hain? तो उसके लिए मिनिस्ट्री ने, यू नो, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कुछ टिप्स इशू किए हैं, जैसे कि ड्रिंक कूल वाटर एवरी 15 टू 20 मिनट्स, टी, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं उन्हें थोड़ा अवॉइड करें, ब्रेक लेते रहें इन अ शेडी और अ कूल प्लेस, हेल्दी खाना खाएं और लाइट खाना खाएं, विच आई ऑल्सो कीप टेलिंग यू कि ज़्यादा ऑयली ना हो, ज़्यादा हैवी फूड ना खाएं, वेयर लाइट एंड लूज क्लोदिंग, बहुत कंफर्टेबल रहेगा, एंड कीप योर हेड कवर्ड व्हेन आउटडोर्स. यस, इट इज़ तो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस धूप में ना हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड सो मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट. सो प्लीज़ अपना ख्याल रखें मेरी जान, क्योंकि आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जी हाँ, सेंडिंग TMO, एश किंग और सुनील चौहान की आवाज़ में. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. और कदम म्यूजियम ने अपना जून का प्रोग्राम कैलेंडर जो है वो लॉन्च कर दिया है और बहुत सारी वर्कशॉप्स, एग्जीबिशन, फैमिली एक्टिविटीज, गाइडेड टूर्स और मास्टर क्लासेस होने वाली हैं. सो नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में होगा म्यूजियम बिंगो फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, 8 से 14 साल के बच्चों के लिए होगा. 8 और 15 तारीख को ओशियन स्टिकर्स एक्वेरियम एक्टिविटी होने वाली है जून 20 को, जहां पर किड्स कैन क्रिएट पेपर एक्वेरियम्स इंस्पायर्ड बाय मरीन लाइफ. एंड म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में प्लैनेट किड्स क्लब होगा, एंशियंट हिस्ट्री और डायनासोर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, स्टोरीज होंगी जून 6 को. बहुत सारी कैलीग्राफी वर्कशॉप्स हो रही हैं, कलर पेंटिंग फॉर एडल्ट्स भी है, स्टोरी टेलिंग सेशन रखा है, फैमिली डे है जून 30 को, ये सारी चीजें होने वाली है. देन मथाफ अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में गाइडेड टूर्स होंगे जो रेगुलरली होते हैं और आर्ट लेसन भी होंगे थ्रू आउट द जून. बहुत सारी क्रिएटिव वर्कशॉप्स है जैसे कि ड्रॉटास्टिक, मिरर पोर्ट्रेट, वॉइस एंड प्रेजेंस आर्ट, ग्रोइंग शैडो, एक्शन मॉडल ड्रॉइंग, शेपिंग कल्चर एंड मथाफ डिजाइन सर्कल हसन फाती एडिशन होने वाला है जून 7, दैट इज टुमारो. एंड 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में भी काफी सारी सेलिब्रेशन है. M7 में है तस्वीर फोटो फेस्टिवल कतर होने वाला है. बी विथ अस एग्जीबिशन सेलिब्रेटिंग कम्युनिटी क्रिएटिविटी कंटिन्यूज अंटिल जून 16. सो यस, बहुत कुछ हो रहा है जून में. सो इफ यू वॉन्ट टू यू नो टेक योर किड्स एंड खुद भी जाना चाहते हैं तो जरूर चेकआउट करें और इसका फायदा उठाएं. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aap ke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par.
2: Tech talk
1: mein baat karte hain AirPods ki. So jitne bhi iPhone users hain and they also use AirPods. तो क्या आपको पता है मतलब ऑब्वियसली जब हम फोन पे बात कर रहे हैं एयरपॉड्स लगा कर तब तो वो माइक का काम कर ही रहा है बट यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड अलग से एज अ माइक्रोफोन भी आप उसको यूज कर सकते हैं. सो यू जस्ट हैव टू गो टू योर सेटिंग्स और माइक्रोफोन वाले ऑप्शन में जाकर आपने अपना एयरपॉड को सिलेक्ट कर देना है और कौन सा वाला यूज करना चाहते हो वेदर राइट और लेफ्ट वाला वो सिलेक्ट करना है और बस फिर उसे कान से निकाल कर जो उसका एंड है ना वहां पर आप बोल कर रिकॉर्ड कर सकते हैं चीजें. यानी इतनी क्लियर और अमेजिंग क्वालिटी आती है. आई सॉ वन वीडियो एंड देन आई ट्राइड इट. इट एक्चुअली वर्क्स रियली वेल. यस, तो ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा काम कर रहा है कि नहीं. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदा.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par. Aur kal dekhi maine maa behan. जी माधुरी दीक्षित तृप्ति दीमरी और धारणा की जो मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे वो मूवी देखी मैंने एंड माधुरी तो भाई एवर ग्रीन है वो उतनी ही खूबसूरत लग रही हैं जितनी वो देवदास में खूबसूरत लगी थी एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय ऑल थ्री ऑफ देम. धारणा बीइंग एन इन्फ्लुएंसर वाज सो गुड स्प्लेंडेड और तृप्ति दीमरी को सो फार जो रोल्स मिल रहे थे यू नो आफ्टर एनिमल एक इमेज बन गया था शी ब्रोक इट इन दिस वन एंड इट वॉज रियली गुड. मुझे बहुत मजा आया वो मूवी देख के. टॉक्स अबाउट अ सर्टन टॉपिक जिसके बारे में यूजुअली बात नहीं की जाती है और काफ़ी यू नो ड्रामेटिक और फनी वे में किया गया है उसका पूरा पिक्चराइजेशन. मुझे बहुत मज़ा आया वो मूवी देखकर. आप चेकआउट कीजिएगा. आई वुड रिकमेंड यू अगर आज वक्त है या फिर कल वक्त है मर्जी आपकी. कल तो वैसे संडे है तो हफ्ता शुरू हो रहा है नया. देखिएगा जब भी टाइम निकाल सके. यू शुड वॉच इट. इट्स अ फन वन एंड सुन रहे रेडियो ऑल जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर. ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरे आपके हम सब के फेवरेट जी हाँ लेम जैम्स का टाइम हो गया. और लेम जैम्स का आज का मेरा सवाल है, रिपीट कर रही हूँ बाय द वे मैं ये क्वेश्चन, जस्ट टू चेक वेदर आपको याद है या नहीं. व्हाट डू यू कॉल गार्ड्स स्टैंडिंग आउटसाइड सैमसंग स्टोर्स? सैमसंग के स्टोर्स के बाहर खड़े गार्ड्स को आप क्या बोलेंगे? ठीक है, लॉजिकल आंसर नहीं देने का है, दीजिए लेम जवाब क्योंकि ये है लेम सवाल. 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जी विंदास मेरी जान.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

जुबिन नौटियाल की आवाज में जादुई फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं मक्कार, मैं तो नहीं मानती। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ ओलिव रिचार्ज चल रहे हैं अब। तो लेम जैम्स का आज का मेरा सवाल था कि व्हाट डू यू कॉल गार्ड्स स्टैंडिंग आउटसाइड सैमसंग स्टोर्स। सो अ फ्यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर ऑलरेडी, कुछ लोग नहीं गेस कर पाए हैं, तो एक और मौका देते हैं। चलिए बताएं कि जो गार्ड्स सैमसंग स्टोर के बाहर खड़े रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे। बहुत फनी है यार ये। एंड दोज हू हैव गॉट द आंसर, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरी जान। एंड एक और मौका है आपके पास, तो फटाफट से गेस कीजिए। अभी कुछ देर में लौट कर आके फिर मैं जवाब बता दूंगी, ठीक है। 3311 1063 या फिर कॉल कर दें 4444 1063 पर। और सुनते रहिए रेडियो ओलिव, जियो बिंदास। रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: लगा और हो जा रिचार्ज.
3: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास.
2: ऑलिव रिचार्ज.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: तनिषा
1: प्राउड तो मैं बहुत हूँ देखो आप लोगों पे जी हाँ दिल खुश कर देते हो आप मेरा यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और सबने सही जवाब दे दिया है एक और मौका दिया और सब समझ गए कि अरे हाँ ये तो ये है सो यस द करेक्ट आंसर इज गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उन्हें बता दूं कि सवाल क्या था बेसिकली व्हाट डू यू कॉल गार्ड्स स्टैंडिंग आउटसाइड सैमसंग स्टोर्स यस गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी जब मैंने पहली बार ये पढ़ा एंड देन आई आस्क्ड पीपल अराउंड मी उनकी जो शक्लें बनी थी ना वो मैं भूल नहीं सकती इट वॉज सो फनी एंड आई डोंट नो वाई बट आई गेट दिस वेरी गुड वाला फीलिंग जब वो गेस नहीं कर पाते और फिर जब वो आंसर सुनते हैं वो मुझ पर डिसअपॉइंट हो चुके होते हैं वो गिव अप कर चुके होते हैं कि नहीं तनिषा तुम रहने दो क्योंकि कौन गेस कर पाता है ऐसे आप हो मेरी जान जी हाँ आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू और इसी बात पे एक बहुत बढ़िया गाना आपके लिए आ रहा है ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मेरी जान

0: Danisha.
1: Beautiful track only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath all of each chal rahe hain yahan par aur ab waqt ho chuka hai mere jaane ka meri jaan. Milenge kal dopahar 2 baje naye hafte ki shuruaat full enthusiasm aur positivity ke saath. Aisi hi umeed karti hu main aake haalchaal puchungi aur agar abhi tak apne liye waqt nahi nikala hai थोड़ा सा वीकेंड और भी बाकी है, निकाल लो यार. बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन में बैठना, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता. ठीक है, सो अपने साथ थोड़ा सा वक्त निकालो और बाकी चिल करो यार. टेक इट वन डे एट ए टाइम. इतना स्ट्रेस नहीं ले लेते होते कि आगे क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होने वाला है, देखा जाएगा जो होगा. ठीक है, अभी आप रेडियो ऑलिव सुनो क्योंकि बढ़िया गाने चल रहे हैं और कहते रहो जियो बिंदास. Radio

की सिक्स्थ ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एट बिनो ब्रांच। सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल। फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा। अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, विजिट फाल्कन फिटनेस बिनो ब्रांच। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंद।

जिसके लिए मैं थर्सडे को सुपर डुपर एक्साइटेड थी, वो टाइम जो है वो बीत गया, मतलब वीकेंड बीत गया यार। और शुरू हो चुका है वो टाइम जब हम फिर से एक वीकेंड का इंतजार जो है वो कर रहे हैं, करेंगे, यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, चार पांच दिन में अब भी के अब भी आपके लिए वीकेंड जो है वो आ जाएगा। अगर आपकी आज छुट्टी है तो फिर आपको वैसी फील आ नहीं रही होगी, लेकिन जिनको सिर्फ फ्राइडे की छुट्टी मिलती है उनको पता ये फील क्या है। लेकिन आज की फील क्या है, कैसा रहा आपका आज का दिन, कैसा रहा आपका वीकेंड, 3311063 पर आप मुझे मैसेजेस भेज दीजिए। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
1: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण।
2: दीपिका पादुकोण,
1: रेडियो ओलिव 106.3।
3: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

जी ये टाइम है वापस आपसे ये पूछने का जो कि मैं हर हफ्ते पूछती हूँ, कैसा रहा आपका वीकेंड? लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मैं बाद में दिल को ये समझा लेती हूँ। सो यार थर्सडे नाइट मैंने ऐसा कुछ बढ़िया नहीं किया लेकिन

0: बढ़िया अपनी पसंद का खाया जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, और मी टाइम लिया। वो मैं उस दिन लेना नहीं चाह रही थी बट हो गया अचानक से, है ना। लेकिन फ्राइडे जो था वो नॉर्मली मेरा रेस्ट डे होता है, लेकिन मैंने थर्सडे रेस्ट ले ली थी। तो शाम को निकली थी मैं, एक मैंने बॉलीवुड नाइट जो थी वो अटेंड की, सूफी नाइट, एंड बड़ा मजा आया यार मुझे आफ्टर सो लॉन्ग जो था यू नो बॉलीवुड गानों के साथ मजा किया। जब आपको लिरिक्स पूरे आते होते हैं, गाने आपको पूरे पता होते हैं ना, तो आपकी वाइब जो है वो अलग ही होती है। सो या मैंने वो किया, अपनी पसंद का खाया पिया, होममेड फूड जो था वो भी खाने में बड़ा मजा आया, क्योंकि वो दो जब आपके दोस्त अच्छे होते हैं आपको घर का खाना खिला ही देते हैं। सो या सो टोटली मेरा वीकेंड जो था वो एकदम ऑसम रहा। फ्राइडे वाले दिन मुझे नींद जो थी वो नहीं मिली, मैं आज 3 घंटे की नींद लेके ऑफिस में पहुंची हूँ, बट ऑल ओवर मेरा जो वीकेंड था वो एकदम ऑसम रहा। आपका कैसा रहा? 3311106 पर बता सकते हैं आज। जी ओविंदार,
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: 106.3 फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एट बिनोम रान. सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल. फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा. अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, विजिट फाल्कन फिटनेस बिनोम रान. वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

तो मेरे स्लीपिंग स्केड्यूल की ना बैंड बजी हुई है, लेकिन मेरा थोड़ा सा बनता भी है लेट सोना। एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ, बट या मैं थोड़ा लेट से ज्यादा ही लेट जो है वो सो रही हूँ। सो मेरा सिस्टम ये है कि सबकी ऑफिस की टाइमिंग जो है वो अलग अलग होती है। मेरा शो इवनिंग में है, तो मैं ऑफिस जो है वो आफ्टरनून में आती हूँ। सो ऐसे टाइम पे जब मैं आफ्टरनून में ऑफिस आ रही हूँ और मेरा शो 9 बजे के अराउंड खत्म होता है, घर पहुंचते पहुंचते मुझे 10:30 के अराउंड जो है बच जाता है। लेकिन अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो फिर और भी ज्यादा टाइम हो जाता है। बट अगर नॉर्मल डे की बात करें, 10:30 में घर पे पहुंच जाती हूँ एंड उसके बाद करते कराते फिर रील्स देखते देखते स्क्रॉल करते करते मेरे को 3 जो है वो कब बच जाते हैं मुझे नहीं पता लगता है। ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक स्टडी कहती है कि रेगुलरली अगर आप 1 बजे जो है वो सोते हैं, ये इंक्रीज करता है रिस्क डिप्रेशन का और एनजाइटी का। बट अगर आप जो है वो सुबह 7 बजे निकलने वाले हैं और 6 बजे निकलने वाले हैं ऑफिस के लिए या फिर उठने वाले हैं, उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को नींद भी बराबर नहीं मिल रही है। मुझे एटलीस्ट अगर मैं 1:30 या 2 बजे या 3 बजे सो रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे 9:30-10 बजे उठना है, तो मैं अपनी नींद बराबर पूरी कर लेती हूँ। बट यस, ये आदत मेरी गंदी भी है कि इतना तो नहीं, कम से कम 12 बजे तो मैं सो ही जाऊँ। बट देर तक जागते मुझे लगता है और भी दिक्कतें हो जाती है, फिर आपको भूख लग जाती है, फिर खाते हो, फिर ये सारी चीजें होती हैं। सो हेल्थ के ऊपर बुरा असर इन शॉर्ट जो है वो पड़ता है। डिप्रेशन और एंजाइटी का तो मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि इंसान जागता ही तब है देर तक जब उसको पता है कि उसको 6 बजे सुबह उठना है, बट उसको नींद नहीं आ रही क्योंकि माइंड में कुछ चल रहा है। सो ट्राई करो जल्दी सोने का अगर आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है। मेरी तरह लेट उठना है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव गोर, कहते रहो जियो बिंदास।

0: दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: This hour is brought to you by
3: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

भाई साहब बालों की ना बैंड बच चुकी है, इतना स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो चल रहा है। मौसम शाम को जो है वो बाहर निकली, आई टोल्ड यू कि मैं बाहर गई थी, और जैसे ही मैं मतलब रूम के बाहर निकली, गेट के बाहर गई, तो मेरे बालों की बैंड बज गई। इतने अच्छे से मैंने अपने बाल सेट करके रखे हुए थे, तो वैसे तो पता ही था कि 5 और 6 तारीख को बहुत ज्यादा विंडी जो है वो डस्टी वेदर जो है वो होने वाला है। सो आज का टेम्परेचर का मिनिमम मैक्सिमम जो है वो कर लेते हैं। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस एंड ब्रीजी रहेगा ऑफकोर्स, एंड दिन में काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाता है। दिन में विंड जो थी 28 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी, एंड ह्यूमिडिटी 14% है। सो मिनिमम टेम्परेचर होने वाला 33 डिग्री सेल्सियस। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास। और वेदर से रिलेटेड और गर्मी से रिलेटेड मैं आपको एक और भी चीज बताऊंगी, थोड़ा सा इंतजार करिए। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

ही पता है आप लोगों को, अब गर्मी बढ़ गई है और मतलब ओहो हो, सन जो है वो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा हीट आपको प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपको चाहिए नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट आपके ऊपर पड़ रही है, डायरेक्ट सन एक्सपोजर जो है इसकी वजह से टैनिंग जो है वो आपको हो सकती है एंड बर्न्स आपको हो सकते हैं, प्रीमेच्योर स्किन एजिंग जो है वो हो सकती है, आई डैमेज हो सकता है। सो बहुत सारे रिस्क है, स्किन कैंसर का भी रिस्क है। सो मेक श्योर कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है गर्मी के टाइम पे स्पेशली जो बाहर निकलने को लेकर है या काम करने को लेकर है, वो सारे रूल्स को आप फॉलो करिए और ध्यान रखिए, हाइड्रेट योर सेल्फ। अपना ध्यान हम खुद ही रख सकते हैं यार, अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कम से कम ये सन एक्सपोजर की वजह से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर. कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन. या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: क्या होता जो राज के पुकारने पे सिमरन ना पलट. वैसे ही क्या होता जो सुबह नाश्ते के लिए मम्मी तवे पर रखा पराठा ना पलटती. भाई साहब सही जगह पर पलटना बहुत जरूरी है. अब पलटने के फायदे और नुकसान क्या है पता चलेगा बहुत जल्द.
5: सुन रहे हैं रेडियो
6: ओलिव 106.3. ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क. रेडियो ओलिव
7: नंबर वन. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ.
9: This hour is brought to you by
10: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: On the number one radio.
6: Olive Sunod Radio Network.

0: बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूं।
1: आगे आगे आगे आगे

ना किसी से था मुझे दूजा ही कोई मिल गया नियत जरा बदल गई मैं भी जरा बदल गया

0: धड़ाम।
1: सोशल मीडिया पे जहाँ पर आपको इतनी वियर्ड वियर्ड चीजें देखने के लिए मिलती है, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी आपको दिखती हैं।
2: रेडियो ओलिफ पर।

जैसे सोशल मीडिया पे आपको पता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने में जाता है। रिसेंटली मैं देख रही थी, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज देखा, एक पेज, वो बंदा जो है ना वो बहुत कमाल का, उसका पेज किस नाम से है, YAIRBM, यानी कि YAIRB मोटिवेशन, ठीक है। सो ये बंदा क्या करता है, ये बंदा जितने भी होमलेस लोग होते हैं ना उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आज रात आप मेरे घर पे टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, खाना खाना चाहेंगे और सोना चाहेंगे। सो बहुत सारे लोग मना भी कर देते हैं क्योंकि हर कोई जो है किसी पे विश्वास नहीं करता, बहुत सारे लोग ओके कर देते हैं। फिर क्या होता है कि उनका एक छोटा सा अपार्टमेंट है जहां पर अगर कोई होमलेस बंदा एक रात रहने के लिए जा रहा है, उसकी वाइफ उसके लिए खाना कुक करती है, ओके, एंड उनको सबसे पहले नहाने के लिए कपड़े दिए जाते हैं, उनको बाथरूम यूज करने के लिए बोला जाता है, फिर उसके बाद उनको खाना दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको एक रूम दिया जाता है जहां पे वो पूरी रात अपनी मर्जी से वो सॉफ्ट गद्दे पे सोते हैं क्योंकि वो होमलेस है, है ना। अगले दिन उनको ब्रेकफास्ट जो है वो बेड पे मिलता है एंड दैट्स हाउ दे से बाय बाय। बहुत ही क्यूट चीज लगी यार मेरे को ये, मतलब आजकल कोई किसी के लिए नहीं करता है ना, लेकिन वो बंदा जा जाके मतलब

0: दस बंदे उसको ना भी बोल रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें से अगर एक बंदा हाँ बोल रहा है तो वो उसको हैप्पी बना रहा है यार। सो या सिमरन कौरियाओं के साथ जियो बिंदास। इसीलिए मौका जब भी मिले ना किसी को खुश करने का, किसी की जरूरतें पूरी करने का, जरूर करिएगा यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। कूल सॉन्ग।

ना जब भी कोई सीरीज या कोई फिल्म आती है पार्ट टू के लिए आप एक्साइटेड होते हो, राइट? क्योंकि आप उसका पार्ट टू तभी देखोगे जब आपको पहली सीरीज या पहली फिल्म का पार्ट जो है वो अच्छा लगा हो। मैं क्या जी सोनियों के दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। सो मैं बताती हूँ, मैंने आपको थर्सडे बताया था ना कि मैं गुल्लक सीजन 5 के लिए मतलब बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। सो कल हम और हमारे दोस्तों ने वो गुल्लक सीजन 5 जो था वो ओपन किया, और जैसे हमने लगाया उसमें से एक कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया, जो उस गुल्लक में जो उनका बड़ा बेटा है, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता ही रहेगा, उसमें उसके बड़े बेटे का कैरेक्टर जो है वो चेंज कर दिया। तो जैसे हमने वो उसको देखा यार, हमारा इतना बड़ा टर्न ऑफ हुआ, क्योंकि आप कैरेक्टर्स के साथ जो है ना वो एक आप इमोशनली बंध जाते हो, और आपको पता है कि ये कैरेक्टर इस टाइम पे ऐसे बिहेव करने वाला, यार इतना बुरा लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने 15-20 मिनट देखा, हमने कनेक्ट करने की कोशिश की उस कैरेक्टर के साथ, लेकिन वी गिव अप, लाइक नहीं हो रहा है यार, क्योंकि आप उन्हीं कैरेक्टर्स को ढूंढते हो। तो मुझे लगता है कि जब भी पार्ट टू बने या फिर सीजन आए तो कैरेक्टर्स को चेंज ना किया जाए तो बेहतर है यार। सिमरन कौर आओगी साथ, जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: I'm the number one Radio Olive.
4: Olive Sunno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.

कभी कभी जो चीज आप देखते हो ना कि ओ हो बहुत ही बढ़िया ये है वो है, वो कभी कभी उतनी होती नहीं है यार। मैंने किसी का रिव्यू देखा था, भाई कहते क्या है माइंड बॉगलिंग ये है वो है। भाई मैं 7th एपिसोड पे पहुंच चुकी हूँ, मुझे कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि बढ़िया नहीं है, बढ़िया है, पर कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जैसा मैंने रिव्यू देखा था कि भाई साहब टावर दौड़ दिस एंड दैट। 7th एपिसोड पे पहुंच रही हूँ, वो अभी तक मैं इंतजार कर रही हूँ जो कि मुझे रिव्यू में ये चीज वो स्पार्क और वो ऐसा दिखा था कि हाँ भाई इसको देखना चाहिए। भाई साहब अब मैं ऐसा हो गई हूँ कि 7th एपिसोड देख लिया, अब मैं खत्म ही कर लेती हूँ, शायद 3 एपिसोड और बचे हुए हैं, पर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। अगर एंड में जाके वो कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं तो मैं ये सारा क्यों देख रही हूँ? मुझे बीच बीच में ऐसे थोड़े से चाहिए ना यार कि मैं हूं कि ओ वाओ, बट ऐसा कुछ नहीं है यार। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: ये वर्ड काफी कूल है।
1: Gen Z decoded.
2: ऐसा ही क्या?
1: दा दा दा।
0: बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोई बंदा इतना गंदा बिहेव कर रहा है, लाइक लाइंस क्रॉस कर रहा है, अनफिल्टर्ड टॉक कर रहा है आपके साथ, तो उसके लिए आप जो है ये वर्ड यूज करते हैं आउट ऑफ पॉकेट। काफी कूल लगा यार ये मुझे वर्ड। आपको कोई ऐसे जेंजी लिंगो पता है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा कूल है तो प्लीज मुझे बताइएगा। 3311063 पर जियो।

0: चिन्हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ आज बिन उमरान सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल। फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा। अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं विजिट फाल्कन फिटनेस बिन उमरान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: थोड़े दिन पहले ना मैंने ऑनलाइन एक जगह से खाना ऑर्डर किया. वैसे तो मैं हमेशा ही ऑनलाइन करती हूँ, बट ये थोड़ा सा खास था.
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ.
0: सिमरन कौरी आपके साथ. थोड़े दिन पहले मैंने कहीं से पास्ता ऑर्डर किया एंड पास्ता के साथ मुझे ना एक बहुत ही प्यारा शेफ की तरफ से नोट लिखा हुआ मिला. उसमें उन्होंने बहुत ही प्यार से मतलब लिखा हुआ था नोट. उसको पढ़ के मुझे ना बहुत अच्छा लगा. चाहे खाना उसके बाद, वैसे तो खाना जो था वो 10 में से 10 नंबर दूंगी उसको मैं, बट अगर मैं सोच रही थी कि उसमें खाना में 10 में से 5 नंबर भी देती तो बिकॉज ऑफ दैट नोट वो मेरे को ऑलरेडी बड़ी अच्छी वाइब आ रही थी मेरे खाने से, है ना. तो कभी कभी होता है कि छोटी छोटी चीजें जब आप किसी के लिए छोटे छोटे एफर्ट करते हो ना तो वो और भी ज्यादा प्यार जो है, इज्जत जो है और वाइब जो है वो ज्यादा सेट कर देते हैं. लेकिन क्या है कि हर इंसान जो है वो हैंड रिटन नोट्स जो है वो नहीं लिख सकता. ये मैंने मेरी लाइफ में चीज सीखी है. बहुत सारे लोग हैंड रिटन नोट देते हैं बट मैं उनमें से नहीं हूं. मैं अगर करूंगी तो वो मेरे एक्शंस में चीजें दिखेंगी बट हैंड रिटन मैं नहीं कर सकती हूं. बट यस, अगर मुझे कोई दे रहा है वो लिख के तो मुझे अच्छा जरूर लगता है. सो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, चाहे वो आपको हैंड रिटन ना भी लिख के आपको बाय एक्शंस अच्छा फील कराता है और आपको उसकी कंपनी

0: अच्छी लगती है तो बहुत ही बढ़िया बात है यार। सिमरन गौरिया आपके साथ जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: The 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

जी मेगा जी सुनियो की हाल चाल सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए। थोड़ी देर में नेम गेम भी खेल लेंगे यार, बट उससे पहले जरूरी बात बता दूं, मालाबार गोल्डन डायमंड्स ने हमको बोला है कि हम आप लोगों को बता दें ये चीज कि अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को आप एक्सचेंज करवा लीजिए नए डाजलिंग डिजाइन के साथ सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। उसके साथ साथ उन्होंने हमको ये भी बोला है कि आपको बता दें कि इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, इसकी वजह से आप अप टू 15% जो है वो गोल्ड प्राइजेस पर सेव कर सकते हो। सो मालाबार गोल्डन डायमंड्स आपको जाना ही पड़ेगा, आपके नजदीकी शोरूम पर आप विजिट कर सकते हो। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

ढेर लगाए, आप लोगों के नाम बोलने वाली हूँ, तैयार हो जाओ। चको फिर चलो जी क्विकली, मैं अब आप लोगों के नाम लेने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अभी के अभी रेडियो पे बोलूँ तो आपको मुझे बस अपना नाम ही बताना पड़ेगा। वो नाम आपने कैसे बताना है, रेडियो ऑलिव के जो व्हाट्सएप का नंबर है उसके ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। चलिए अब मैं नाम लेने स्टार्ट कर रही हूँ। अबरार, असलम, आसमा, तनवीर, सईद, बिश्नु, इरशाद, फैजल, रिजब जी, अच्छा आपने अपना नाम ही गलत लिख दिया था, ऋषभ, जीन, आजम, महरूज, बिश्नु, शिवा, नदीम, मोहम्मद अशरफ जी, थैंक यू सो मच, इम्तियाज जी, राजीव जी, थैंक यू सो मच, दानिश जी, थैंक यू सो मच, वजाहत जी, थैंक यू सो मच, बंगेश जी, थैंक यू सो मच, एन जी, थैंक यू सो मच, सामी जी, थैंक यू सो मच, सव्या जी, थैंक यू सो मच, निर्मल जी, थैंक यू सो मच, जुल्फी जी, रिशान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शशिकांत जी, फैजल जी, किशोर जी, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए अब आप मुझे थैंक यू लिख सकते हैं और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलिएगा। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: देखो यार, गुस्सा जब आता है ना इंसान को, बहुत कम लोग हैं जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाते हैं। और एक तरफ मैंने लोगों को ये कहते भी सुना है कि गुस्सा अगर बाहर ना निकले तो अंदर खराब करता है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को दबा लेते हो। तो ऐसी हालत में मुझे नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि जब मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, ओके, तो जब मुझे आता है मैं फट जाती हूँ, और 5 मिनट बाद मुझे रियलाइज हो जाता है नहीं फटना था यार, नहीं इतनी क्या जरूरत थी। मैं अपने आप को समझाती हूँ, जब मैं किसी सिचुएशन में होती हूँ तो मैं अपने आप को समझाती हूँ, नहीं सिमरन नहीं, तुमको ना ऐसे रिएक्ट नहीं करना। जैसे ही वो इंसान सामने आता है मैं फट जाती हूँ और बोलती हूँ अरे यार। सो गुस्सा एनी विच वेज, किसी भी हालत में गुस्सा जो है वो बुरा है। एक स्टडी ये कहती है कि आपका 1 मिनट का गुस्सा जो है ना, वो 5 घंटे के हिसाब से आपका जो है वो इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। सो इन शॉर्ट, मैथ्स नहीं करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब आप गुस्सा करते हैं। तो ट्राई करिएगा कि जब गुस्सा आए तो उसको शांत करिएगा, जो बात कहनी है वो आराम से कह के देखिएगा। मुझे पता है जब सिचुएशन होती है, जब गुस्सा होती है, ये बातें बेकार लगती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि ट्राई करके देख लीजिए यार। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Cool song.

करती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ बातें करते करते चार घंटे जो है वो किस तरह से फिनिश हो गए वो मुझे पता ही नहीं लगा, बट यस जिस तरह से अपना वीकेंड हो जाता है चुटकी बजा के। चलो अब सिमरन कौर के यहाँ से गलती मानने का टाइम जो है वो आ चुका है एंड कल शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात। अगले 2 घंटे मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिएगा एंड ओवरथिंकिंग मत करिएगा, टाइमली सो जाइएगा और बस ठीक है यार, बाकी तो आपको सब पता ही है, बाकी की बातें कल कर लेंगे यार। खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

Good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show का नाम है Midnight Lounge. So, कभी आपने सोचा है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं होता? कभी घर एक खुशबू होता है, कभी माँ के हाथ की चाय, तो कभी पापा की बस एक आवाज, कभी बचपन की वो गली जहाँ आज भी शाम वैसी ही होती है जैसे हम छोड़ कर आए थे. So, I always wanted कि यार मैं हमेशा उस चीज़ के बारे में बात करूँ जो मुझे लगता है कि मैं बहुत मिस करती हूँ. So, एक ऐसी घर वाली फीलिंग जो हमें हर रोज़ आती है. कुछ ऐसी यादें होंगी जो आपको लगता है कि घर जैसा एहसास दिलाती है. हो सकता है कि वो कोई भी तैयारी हो, कोई प्रिपरेशन जो आप खाने के लिए करते हो, या हो सकता है कि किसी की शादी का शोर, या फिर बस वो एक आवाज़. कहते हैं इंसान घर से दूर रह सकता है लेकिन घर उसके अंदर से कभी दूर नहीं जा पाता. तो आज रात अपनी यादों को दरवाजे खोलिए और बताइए कि आपके लिए घर एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है. सो यू हैव माई नंबर विच इज 3311063. मुस्कान है आपके साथ और ये है मिडनाइट लाउंज. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यार कन्फेशन तो करना चाहिए था बट कभी कह नहीं पाए। कुछ बातें ना बहुत अजीब होती हैं, उन्हें कहने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं लेकिन कभी कभी हम पूरी जिंदगी नहीं कह पाते, जैसे कि सॉरी, थैंक यू, आई मिस यू, मतलब मुझे तुम्हारी जरूरत है इस वक्त में, ऐसा कुछ भी, और फिर वक्त निकल जाता है और रात का कन्फेशन इसी बारे में होता है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज। वो एक बात जो आप कभी किसी से कह नहीं पाए, शायद किसी फ्रेंड से, शायद किसी मोहब्बत से, या शायद खुद से, मतलब मेरे लिए तो खुद से ही बातें करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा दर्द उन बातों का नहीं होता जो हमने कह दी है, बल्कि उन बातों का होता है जो हम कह नहीं पाते, यू नो, जो रह जाती हैं। आज एनोनिमस रहकर भी आप अपने दिल की बात कह सकते हो सिर्फ एक मैसेज के थ्रू। यू नो, यू कैन सेंड योर मैसेज टाइप करके या फिर वॉइस नोट में, नंबर आपको पता है, विच इज 3311063, और शायद आज वो बात हवाओं के साथ उस इंसान तक पहुंच जाए, हो सकता है ना। सो फटाफट से मुझे व्हाट्सएप कीजिए और बताइए कि क्या था वो। बाय द वे, आई हैव वन थिंग जो मैं हमेशा से कहना चाहती थी खुद से कि भाई मैं बहुत कैपेबल हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, पर हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, किसी के सपोर्ट की तो ज़रूरत है ही। सो ऐसे करते करते मैं खुद को कभी समझा ही नहीं पाई। पर आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगती है जो आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो कह देनी चाहिए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

0: रखे, बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक है ना,
1: बस चल रहा है भाई।
0: What about you?
2: हाँ चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक है ना,
1: हाँ ठीक है,
0: और तेरा
2: बस चल रहा है।

0: तो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है।
1: व्हाट अबाउट यू?
0: हाय लिख के दूं क्या?

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या? ये है मिडनाइट
2: लव। सो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आज के आप जो हैं वो 10 साल पहले वाले आप से मिल लें तो क्या कहोगे? इंटरेस्टिंग सवाल है ना। मैं हर बार सोचती हूँ अगर 10 साल पहले मुझे कोई एडवाइस मैं खुद दे पाती तो मेरे पास कितनी सारी चीज़ें थी खुद को बताने के लिए। यू नो आई वॉज रनिंग कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पर जो एक्चुअली मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था मैंने वो कभी ध्यान ही नहीं दिया। सो यू नो हम खुद से कहना चाहेंगे कि शायद डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, हर इंसान हमेशा साथ नहीं रहेगा, या फिर तुम जितना सोचते हो उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से कहना चाहेंगे अगर हम 10 साल पहले खुद से मिल पाए। So, एक किताब में मैंने पढ़ा था कि हम अक्सर फ्यूचर के लिए इतने परेशान रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कभी हम किसी और के फ्यूचर हुआ करते थे। या और देखिए हम यहाँ तक आ गए, परफेक्ट नहीं है लेकिन भाई टूट कर भी हम बिखरे नहीं। तो आज रात एक मिनट लीजिए और दिल में एक छोटी सी चिट्ठी लिखिए उस वर्जन को जो कभी सपने में देखा करते थे। यू नो 3311063 इज माई नंबर एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। ये है मिडनाइट लाउंज। Stay tuned, Jio Bindas.

0: रहे हैं मिडनाइट लाउंज। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स्थ ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एट बिनो ब्रांच। सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल। फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा। अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, विजिट फाल्कन फिटनेस बिनो ब्रांच। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: क्या होता जो राज के पुकारने पे सिमरन ना पलट, वैसे ही क्या होता जो सुबह नाश्ते के लिए मम्मी तवे पर रखा पराठा ना पलटती। भाई साहब, सही जगह पर पलटना बहुत जरूरी है। अब पलटने के फायदे और नुकसान क्या है पता चलेगा बहुत जल्द।

हर इंसान की जिंदगी में ना एक गाना होता है, फेवरेट वाला नहीं, स्पेशल वाला, वो गाना जो बैठते ही दिल के किसी पुराने कमरे के दरवाजे खोल देता है। एक गाना और साथ में हजारों यादें, हो सकता है किसी का कॉलेज, किसी का पहला प्यार, किसी की पहली जॉब, किसी का लास्ट गुड बाय। अजीब बात यह है कि गाना सिर्फ सुना नहीं जाता, गाने एकदम जिए जाते हैं। तो आज आपका फेवरेट गाना कौन सा है मुझे जरूर बताइएगा, विच इज माई व्हाट्सएप नंबर 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और यह है मिडनाइट लाउंज। सो कौन सा गाना आपकी कहानी जानता है, कौन सा गाना सुनते ही लगता है कि हाँ ये तो मेरे लिए ही लिखा गया है। बाय द वे आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस कि भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप अपने सेल्फ से, मतलब खुद से 10 साल पहले मिलते तो बातें करते। एक सबसे इंटरेस्टिंग मैसेज ये था कि जब वो अपने 20s में थे तब उन्हें लगता था कि लाइफ में सेटलमेंट का मतलब होता है किसी का साथ होना, बट विद टाइम उन्हें समझ में आया इन 30s कि भाई एक्चुअली आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना आना चाहिए। अगर आप अपने साथ खुश रह सकते हो तो आप दुनिया में किसी के भी साथ खुश रह सकते हो। और ये बात एक्चुअली वो अपने 10 साल पुराने सेल्फ को समझाना चाहते हैं। आई वाज लाइक सीरियसली, ये तो बहुत ही सच बात है, हम अगर खुद के साथ खुश रह सकते हैं ना तो हम किसी के भी साथ खुश रह सकते हैं। बाय द वे यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज।

यार मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यादें ना रात को ही क्यों आती हैं। दिन में हम बिजी रहते हैं शायद मीटिंग्स, कॉल्स, मैसेजेस, डेडलाइंस, लेकिन रात को, रात के पास हमारे लिए वक्त होता है, हमारे पास रात के लिए वक्त होता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज। और शायद इसीलिए रात हमें हमसे मिलवा देती है। वो लोग याद आते हैं अब साथ नहीं है, वो फ्रेंड्स जो आपके स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, या फिर यू नो आपके कंट्री मूव करने से पहले शायद आपके साथ थे, वो सब आपको याद आते हैं। वो सपने याद आते हैं जो अधूरे रह गए, वो पल याद आते हैं जिन्हें हम दोबारा जीना चाहते हैं। शायद यादों का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन शायद वो हमें याद दिलाती है कि हम सच में जिंदगी जी रहे हैं। सो मेरा ये सवाल हमेशा रहता है कि व्हाई डू मेमोरीज विजिट एट नाइट, मतलब हमें वो सारी चीज़ें रात को याद आने लगती हैं जब हम घर पहुँच कर सुकून से बैठने की कोशिश करते हैं कि काश वो भी साथ होती, काश वो भी साथ होता। सो यूजुअली मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप मुझे बताइए कि 3311106 इज माई व्हाट्सएप नंबर, कि आपको भी रात को ऐसा लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो कोई याद नहीं आती। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, ये है मिडनाइट लाउंज, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

चलिए थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता? कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, थ्रिलर, और सबसे इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा होता? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। बैकग्राउंड म्यूजिक की जब भी बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कॉमेडी हो लेकिन म्यूजिक गलत लग जाए तो फिर सोचिए क्या वो मतलब ठीक लगेगा। सो मुझे लगता है हम सब अपनी लाइफ के ना हीरो हैं। मतलब मैं तो हीरोइन हूँ, पर आप अपनी लाइफ की या तो हीरो हैं या हीरोइन हैं। सो बस कभी कभी इंटरवल थोड़ा सा लंबा हो जाता है और कभी कभी स्टोरी समझने में वक्त लग जाता है। तो आज ये बताइए कि आपकी लाइफ का मूवी टाइटल क्या होता अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती और उस मूवी का हीरो अभी किसी फेज से गुजर रहा है तो वो कौन सा फेज है? बताइए मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है मिडनाइट लाउंज। जियो बिंदास।

सो अगर आपको जिंदगी के सारे व्हाट इफ देखने का मौका मिल जाए तो सोचिए, अगर आपने वो जॉब ले ली होती, अगर आप उस शहर में रुक गए होते, अगर आप उस इंसान को हाँ कह दिया होता आपने, अगर आपने वो रिस्क ले लिया होता, ये सारे व्हाट इफ सोचिए अगर आपको देखने के लिए मिल जाए। हम सबके पास कुछ ना कुछ अगर होता है और आज की किताब भी इसी बारे में है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। किताब का नाम है द मिडनाइट लाइब्रेरी। कहानी है नूरा नाम की एक लड़की की, जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसने हर जगह पर गलत डिसीजंस लिए हैं, लेकिन फिर वो एक अजीब सी लाइब्रेरी में पहुंचती है। एक ऐसी लाइब्रेरी जहां हर किताब उसकी जिंदगी का एक अलग वर्जन है। एक किताब खोलती है तो वो देख सकती है कि अगर वो सिंगर बन जाती तो क्या होता। दूसरी किताब, अगर वो किसी और सिटी में शिफ्ट हो गई होती तो क्या होता। तीसरी किताब, अगर उसने कोई और डिसीजन लिया होता तो क्या होता। और यही इस किताब का सबसे खूबसूरत लेसन छुपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी किसी और रास्ते पर ज्यादा बेहतर होती, लेकिन सच क्या है, हर जिंदगी के अपने स्ट्रगल्स होते हैं। हर चॉइसेस कुछ देती हैं और कुछ लेती भी है। कभी कभी प्रॉब्लम हमारी लाइफ नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसे दूसरी जिंदगियों से कंपेयर करते रहते हैं, जो हमें कभी जी ही नहीं है और हम ना कभी जीने वाले हैं। सो आज रात का सवाल, अगर आप अपनी जिंदगी की एक ऑल्टरनेटिव वर्जन देखने का मौका मिले आपको, तो आप कौन सी जिंदगी देखना चाहोगे? और क्या पता देखने के बाद आपको एहसास हो कि जो जिंदगी आप जी रहे हो शायद वो उतनी भी बुरी नहीं है, बेस्ट है शायद। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Midnight Lounge.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: क्या होता जो राज के पुकारने पे सिमरन ना पलट, वैसे ही क्या होता जो सुबह नाश्ते के लिए मम्मी तवे पर रखा पराठा ना पलटती। भाई साहब, सही जगह पर पलटना बहुत जरूरी है। अब पलटने के फायदे और नुकसान क्या है पता चलेगा बहुत जल्द।
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.

So, आज का दिन तो खत्म हो गया और इसी के साथ वीकेंड भी खत्म हो गया. कल नया वीक स्टार्ट होगा आज की रात के साथ साथ. लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल, जब सब कुछ मुश्किल था तब आपको किस चीज ने संभाला? किसी दोस्त ने, किसी दुआ ने, किसी गाने ने या फिर किसी आवाज ने? ये सिर्फ उम्मीद की कल बेहतर होगा. जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी टूटता जरूर है, लेकिन हर इंसान के पास एक जवाब भी होता है फिर से उठने का. और अगर आपने पूरे दिन बस सर्वाइव किया है तो यकीन मानिए ये भी एक अचीवमेंट है. खुद पर थोड़ा सा रहम कीजिए, खुद को थोड़ा सा क्रेडिट दीजिए. और मैं हूँ मुस्कान, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM और ये है मिडनाइट लाउंज. सो अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल संडे को खूब सारी नई कॉन्वर्सेशंस के साथ मॉर्निंग में आप मिलेंगे सुदेव से. और उसके बाद कशिश आपके लिए लेकर आएगी कि पलटना इंपॉर्टेंट है. पलट मेरे यार, और कल कहाँ पलटना है ये भी आपको पता चलेगा लाइफ मस्त है में. और उसके बाद बैक टू बैक अमेजिंग शोज विद तनिषा एंड सिमरन. और रात को फिर मैं मिलूंगी आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. तब तक के लिए सुनते रहिए, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Radio Olive, your happiness frequency.

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM

ये मेरा पहला गाना है बॉलीवुड में. दिस इज कंपोज बाय मिथुन शर्मा. लाइक लिटरली माय फर्स्ट सॉन्ग इन द इंडस्ट्री एज अ प्लेबैक सिंगर.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।